थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात। हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

प्रार्थना अभवत। आज संस्कृतम वदामः कार्यक्रम का 35वां एपिसोड है। वेणु ध्वनि पे संस्कृत सुनते सुनते 35 एपिसोड्स हो गए। कार्यक्रम के श्रोताओं के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती रही हैं, जो हमें अगले कार्यक्रमों की योजना बनाने में बहुत मदद करती हैं। उन बहुत सारे प्रतिस्पंदों में से कुछ हम आज आपके साथ बांटेंगे। 5 विशेष बिंदु है। पहला बिंदु है, संस्कृत भाषा उतनी कठिन नहीं है जितना कि हम समझते थे। दूसरा बिंदु है, कार्यक्रम में बोला हुआ संस्कृत हम आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा बिंदु है, संस्कृत गाने बहुत प्यारे लगते हैं और गुनगुनाने में मजा भी आता है। चौथा बिंदु है, छोटे छोटे संवाद और संभाषण कथाएं हमें बहुत पसंद है। पांचवा बिंदु है, कार्यक्रम में व्याकरण की बात ज्यादा होती है तो संस्कृत थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हम उल्टे क्रम से इन बिंदुओं की थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। पांचवें बिंदु में आई व्याकरण की बात। व्याकरण पढ़ाते समय टेक्निकल टर्म्स आती है, उनका स्पष्टीकरण रेडियो पे देना जरा मुश्किल होता है। संस्कृत व्याकरण कठिन नहीं है, मगर सामने किताब नहीं है, नोटबुक नहीं है और शिक्षक भी नहीं है तो कठिन सा महसूस होता है। इसलिए इस कार्यक्रम में हम व्याकरण की बात ज्यादा नहीं करेंगे, जितनी आवश्यक उतनी ही और जब आवश्यक तब ही व्याकरण की बात करेंगे। बचपन में माता की गोद में बैठकर हम लोगों ने सुन सुन कर और बोल बोल कर मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त किया है। भाषा अभ्यास की यही स्वाभाविक पद्धति है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये भाषा अभ्यास के 4 सोपान है। जब कोई व्यक्ति अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे भाषा भाषी प्रदेश में जाके निवास करता है, तब वह वहाँ की भाषा को दैनिक व्यवहार के कारण बिना परिश्रम और बिना व्यवस्थित व्याकरण अध्ययन के समझने लगता है, थोड़े ही दिन में सीख भी लेता है। संस्कृत भाषा की भी वैसी ही सुन सुन के और बोल बोल के प्रैक्टिस हो सकती है। ये तो आपका अब अनुभव भी है। आपके प्रतिस्पंद से, प्रतिक्रिया से पहले 4 बिंदुओं ने यही तो बताया है। आपने ही कहा है कि चौथा बिंदु जो है, छोटे छोटे संभाषण, संवाद, कथाएं बहुत पसंद है। तीसरा बिंदु है, संस्कृत गाने बहुत प्यारे लगते हैं, गुनगुनाने में मजा आता है। दूसरा बिंदु है, कार्यक्रम में बोला हुआ संस्कृत सब कुछ समझ में आता है आसानी से। पहला बिंदु है, संस्कृत भाषा उतनी कठिन नहीं लगती जितना कि हमने सोचा था। आपके प्रतिस्पंद से वेणु ध्वनि के संस्कृतम वदामः कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगच्छन्तु संस्कृतम शृण्मः, संस्कृतम वदामः। अद्य विषयः अस्ति संस्कृत भाषा अभ्यासः कथं कुर्मः। उत्तरं सर्वे जानन्ति एव, किं तत् उत्तरम्? आम्, श्रुत्वा श्रुत्वा, उक्त्वा उक्त्वा, सुन सुन के और बोल बोल के, याने क्या? याने संभाषण से। भवन्तः 35 एपिसोड्स संस्कृत भाषायां श्रुण्वन्तः सन्ति। भवन्तः संवादाः, कथाः सम्यक् जानन्ति। गीतानि इच्छन्ति, गीतानि गायन्ति अपि। इतः परं विना संकोचं संभाषणं कुर्वन्तु। भीतिः मास्तु। भाषा शुद्धा भवतु वा अशुद्धा भवतु, धैर्येण संभाषणं कुर्वन्तु। मार्गे, उद्याने, आपणे संस्कृतं वदन्तु। कार्यालये अपि भोजनसमये, काफीपानसमये वा यदा शक्यं संस्कृतं वदन्तु। मित्रेभ्यः यावत् जानन्ति तावत् संस्कृतं पाठयन्तु। तेन भवतः अभ्यासः सम्यक् भवति, वेगेन भवति, भवतां भाषाज्ञानं स्पष्टं भवति, दृढं भवति। संस्कृतसंभाषणेन भवतां जीवने परिवर्तनं भवेत्, संस्कृतेः रक्षणम् अपि भवेत्। आगच्छन्तु एकं गीतं शृण्मः, वयं गायामः, भवन्तः अनुगायन्तु। गीतमस्ति संस्कृतेन संभाषणं कुरु, किञ्चित् एव गायामि संस्कृते।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वणधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: माफी का महत्व. अगर कोई कुटिलता से पेश आए या फिर बार बार अपमानित करे तो दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है, बदले की भावना भड़क उठती है. किंतु बदले के जवाब में बदले की

0: आग तो और भड़क सकती है। इससे तो केवल मन की सुख शांति ही नष्ट होती है। इससे क्या उपाय है मुक्ति का? इसका एक सरल हल है, माफी। माफ करना बड़े दिल और महानता की निशानी है। जिनका हृदय सागर की तरह विशाल होता है, वे सहज ही दूसरों की गलतियों को भुलाकर उन्हें माफ कर देते हैं। माफी दिल के घावों के लिए उत्तम मरहम और मन की बेचैनी की सर्वश्रेष्ठ औषधि भी है। अपराधी के कुत्सित व्यवहार, निंदा अपमान को भूल जाना और अपराधी के प्रति प्रेम भाव रखना ही सच्चे अर्थ में माफी देना है। मन की खटाश व कटुता को सदा के लिए खत्म कर स्नेह भावना रखना भी माफ कर देना है। ये केवल बीते काल की प्रताड़ना को भूलने का ही साधन मात्र नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में खुद की गलती से पैदा हुए अपराध बोध और आत्मग्लानी से मुक्ति का रामबाण उपाय भी है। भूतकाल की भूल या पिछले कुत्सित कर्म से मन में डर और अपराध की भावना व्यक्ति को जीने नहीं देती। ऐसे में अगर साहस और हिम्मत से व्यक्ति झुक कर माफी मांग ले तो सामने वाला भी झुक जाता है। माफी मांगना कायरता कमजोरी नहीं, ये नम्रता, आत्मशक्ति और चेतनता की निशानी है। जो खुद की गलती महसूस करता है और माफी मांगता है, सही मायने में वो ही महान है। इसे आगे बढ़ने का रास्ता भी खुल जाता है और पाप भी नाश हो जाते हैं। वास्तव में माफ करना और माफी मांगना दोनों से ही दिल का बोझ हल्का हो जाता है और सदा मन भी प्रसन्न रहता है, और फिर नए सिर से मधुर और सुदृढ़ संबंधों की नींव रखी जा सकती है। सच तो ये है कि इस महान गुण से ही आत्म शांति, संतोष और प्रसन्नता का खजाना मिलता है। अतः माफी के महान गुण को अपनाइए और जीवन में सदा हल्का फुल्का रहने की कला ईजाद कीजिए। ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं है।
1: श्रोदेव, देवाची पूजा म्हणजे केवळ मंदिरात जाऊन दिवा लावणे नव्हे तर आपल्या मनातील अहंकाराचा अंधार दूर करणे ही खरी पूजा आहे। आपण कितीही ज्ञान मिळवले, कितीही यश संपादन केले तरी नम्रता हरवली तर त्या यशाचे सौंदर्य कमी होते। गुरु आपल्याला केवळ ज्ञान देत नाहीत, ते आपल्याला योग्य अयोग्य ओळखण्याची दृष्टी देतात। म्हणूनच आपल्या जीवनात मार्गदर्शन करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबद्दल कृतज्ञता ठेवणे महत्त्वाचे आहे। आज काही क्षण शांत बसा, आपल्या श्वासाकडे लक्ष द्या, मनात ईश्वराचे स्मरण करा आणि स्वतःला एक प्रश्न विचारा। आज मी कोणाच्या जीवनात थोडा आनंद, आधार किंवा मदत देऊ शकतो? या प्रश्नाचं उत्तर कृतीतून दिले तर तीच खरी भक्ती ठरेल। हे होते आजचे आध्यात्मिक विचार आणि आता एक छानसं भक्तिगीत ऐकत राहा। 90.4 FM KLE कणसू भक्तिमय।

0: रेणुधुनी 90.4 FM KLE गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
3: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
4: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
3: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
5: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
3: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
6: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5,00,000 रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
7: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रूपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
9: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेन ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का 3रा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में 20 सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। प्रतियोगिता में अब केवल दो दौर बाकी है और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
2: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
10: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
2: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
12: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, चार बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नव भारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLEV वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। सबसे पहले तो आप सभी को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल की शुरुआत, एक नई शुरुआत आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और इसी के साथ आज का शो शुरू करती हूँ और शुरुआत के कुछ प्यारे गाने आपको सुनाती हूँ। सुनते रहिए KLEV वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारे साल की शुरुआत आज से होती है, चैत्र प्रतिपदा से होती है। और आज सुबह से आपने पाड़वा स्पेशल बहुत सारे कार्यक्रम सुने होंगे और बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी। मैं भी थोड़ा बहुत इसी थी

my dear lovely friends. Welcome, ladies and gentlemen, people of all the ages, to your favorite show, Be Relax, only on Belgium's first radio station, Venudhwani 90.4 KLE Kanasu. And I am your favorite, प्यारा दुलारा हैंडसम रेडियो दोस्त आरजे आयुष. दोस्तों देखिए, हमने आपको एक कमिटमेंट दी है कि हर रोज शाम को 5 से लेकर 8 बजे तक हम आपका करेंगे मनोरंजन और देंगे आपको कई सारी जानकारियां, और उसी कमिटमेंट को पूरा करने में हम अपनी जी जान लगा देते हैं. वैसे ही अगर आप किसी को कमिटमेंट देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, ये एक तरह का वचन होता है, तो प्रॉमिस होता है. अगर तो आपने सुना ही होगा, एक फ्रेज है जिसे कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए. आज की शाम में हम बात करने वाले हैं उसी एक शब्द की जो आपको आपकी जुबान पर अड़े रहने के लिए एकदम मजबूर कर देता है, और उसी से आपके वैल्यूज और आपके इंसान होने का थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है, और वो शब्द है कमिटमेंट. और इसी के साथ देंगे आपको बहुत सारा मनोरंजन, यानी सतरंगी गानों का तड़का. सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द शो विद मी, यानी आरजे आयुष के साथ, ओनली ऑन वेनुध्वनि 90.4 KLE कनसू.

हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में, और आपने ट्यून कर लिया है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनासू। दोस्तों, द पावर ऑफ कमिटमेंट, अ क्वालिटी दैट हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स एंड मूव माउंटेन्स। कमिटमेंट एक तरह का डेडिकेशनल वर्ड है टू अ कॉज और टूवर्ड्स द गोल, और कह सकते हैं एक तरह का फोर्स है जो आपको पुश करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने में। दोस्तों, हम सभी अपनी अपनी जीवन या लाइफ में कहीं ना कहीं कमिटमेंट से घिरे हुए होते हैं। कहीं काम को पूरा करने का कमिटमेंट, तो कहीं किसी से मिलने का कमिटमेंट। बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जिनको पूरा करने में हम अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और अनब्रेकेबल प्रिट चाहिए होती है। दोस्तों, जो कमिटमेंट्स हम करते हैं उन्हें पूरा करना हमारा फर्ज है, उसी के भरोसे पूरा सारा भार टिका हुआ है। अब हमने आपको एंटरटेन करने के लिए कमिटमेंट ली है, तो उसी कमिटमेंट से सुनाएंगे आपको कुछ हार्ट टचिंग सॉन्ग्स। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारे साथ हमारा शो बी रिलैक्स, ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनासू पर।

कभी कभी माँ बनने का सफर होता है थोड़ा लंबा, बट यू आर नॉट अलोन। खेली फर्टिलिटी सेंटर इज विथ यू विथ साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत खेली IVF के साथ। खेली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, खेली डॉक्टर प्रभाकर पूरे हॉस्पिटल एंड MRC बेलगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377 एक्सटेंशन 1530।

चाहे गर्मियों में ना हमें बहुत यू नो रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स की बहुत इच्छा होती है कि शरबत बना के पी लिया, कुछ कूलर्स पिए, स्मूदीज या मिल्क शेक्स, यू नो. तो ऐसा ही एक नेचुरल कूलर है, दैट इज कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट वाटर. मराठी में शहाड़ाचं पानी, हिंदी में नारियल पानी. और ये बहुत ही सोडियम और बहुत सारे मिनरल्स से भरपूर होता है, मीठा होता है, ठंडक देता है हमारे शरीर को. और उसी के साथ अगर नारियल की मलाई आपको पसंद है तो वो भी आप खा सकते हैं. समर में ये बहुत फायदेमंद साबित होता है. और एक छोटी सी क्विक रेसिपी आपको बताऊं, आप ना नारियल पानी लेने जाइए, अपने साथ ना दो कंटेनर कैरी कीजिए, एक में नारियल का पानी अलग से ले लेना और दूसरे कंटेनर में नारियल को खोल कर उसके अंदर की मलाई है ना वो दूसरे कंटेनर में ले लेना. अगर आप घर पे ये सब कर सको तो आप घर पे कर लो, नहीं तो जहाँ से हम नारियल पानी खरीदते हैं वेंडर से वहाँ पर ये आप अलग अलग कंटेनर में लेकर आइए घर पे. और नारियल की मलाई पे कभी कभार थोड़ा बहुत छिलका रह जाता है तो वो छिलका हटा दीजिए. नारियल पानी और नारियल की मलाई को एक साथ ब्लेंड कीजिए, उसे कुछ देर फ्रिज में ठंडा कीजिए या फिर आप आइस डाल के भी ब्लेंड कर सकते हो और फिर इस ड्रिंक को आप पीना, बहुत मजा आएगा. जरूर ट्राई करना और कैसा लगा मुझे भी जरूर बताना. हमारा नंबर है 9019904904. समर इतना इंटरेस्टिंग कभी नहीं लगा ना, जब हम समर में क्या क्या खा पी सकते हैं इसके बारे में बातें करते हैं तो अपना इंटरेस्ट अपने आप जागता है और समर हमें अच्छा लगने लगता है. बातें जारी रहेंगी पर गाने भी सुनेंगे, तो सुनाती हूँ कुछ प्यारे गाने. आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM.

फेवरेट शो बी रिलैक्स और हम बात कर रहे हैं आज द पावर ऑफ कमिटमेंट्स कर और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु और मैं हूं आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूं। दोस्तों जानते हैं कुछ एसेंस ऑफ कमिटमेंट्स के बारे में। जैसे एट द कोर ऑफ द कमिटमेंट लाइज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस एंड डिटर्मिनेशन। ये एक तरीका कॉन्शियस डिसीजन होता है जो हम अपने पूरे होशो आवाज में लेते हैं और होशो आवाज में लेना भी चाहिए, जिससे हमें जो पाथ चूज किया है या रास्ता जो चूज किया कि यार मैंने इस पे कमिटमेंट दी है उसको पूरा करने का हमें एक लक्ष्य मिले, फिर चाहे वो कितना भी चैलेंजिंग हो सकता है या इजी भी हो सकता है, आपको वो कमिटमेंट पूरा करना ही है। कमिटमेंट कांट गो बियॉन्ड फ्लीटिंग एंथुसियाज्म। ये एक तरीका डीप रूटेड डेडिकेशन होता है जो हमें चलते रहने पर मजबूर करते जाता है विद एडवर्सिटी एंड सेटबैक्स। जरा सोचिए खुद की पर्सनल ग्रोथ और वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग जो हमें आती है उस वचन या कमिटमेंट को पूरा करने में या उस पर अटल रहने पर, बाय सेटिंग क्लियर गोल्स अलाइंड विद आवर वैल्यूज। इट्स लाइक प्लांटिंग सीड्स ऑफ ग्रोथ दैट ब्लॉसम इनटू फ्लावर्स। और उन्हीं फूलों की तरह हम बनाएंगे आपकी शाम थोड़ी सी मनमोहक और सुनाएंगे आपको कुछ जबरदस्त गाने। तो सुनते रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो नमस्कार एंड गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी आरजे आयुष के साथ बेलगम का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसु। दोस्तों देखिए, एसेंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया और उसके अब जानते हैं हाउ कमिटमेंट वर्क्स इन पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों जब आप कमिटमेंट को पर्सनल ग्रोथ में ढाल देंगे तब आपको पता चलेगा कि यार मेरा फुल पोटेंशियल तो ये था जिसको मैं अभी तक कर ही नहीं पाया, निखार ही नहीं पाया। इसकी आदत होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। By setting goals and aligning them with our values and passion, हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं towards continue improvements या उनकी तरफ ढाल सकते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट वही होता है जो अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता है, जो हमको पुश करता है ग्रो करने के लिए, फिर चाहे हम फेल ही क्यों ना हो जाए उस प्रयास में। लेकिन आपको एंटरटेन करने का ये अचूक प्रयास कभी फेल नहीं होने वाला है, तो सुनते रहिए, कहीं जाइए मत, क्योंकि मैं आपको सुनाने वाला हूँ दिल को छू जाने वाले गाने ओनली ऑन वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

क्या बात है दोस्तों, बने रहने के लिए आप सभी का तहे तहे दिल से शुक्रिया। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके पसंदीदा शो बी रिलैक्स में, और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। और आज इस मस्ती भरी शाम में हम बात कर रहे हैं कमिटमेंट्स की, जहां मुंह से निकला हुआ शब्द कहते हैं कि पत्थर की लकीर होता है। दोस्तों जानते हैं कमिटमेंट कैसे हमारे प्रोफेशनल लाइफ्स भी सिक्योर करती है, जिसे प्रोफेशनल फील्ड में भी कमिटमेंट एक ऐसा फोर्स है जो हमें सक्सेस अचीव करने और हमारे गोल्स को पूरा करने में हर तरह से सहायक होता है। वेदर एन एंटरप्रेन्योर लॉन्चिंग अ स्टार्टअप और एन एम्प्लॉई स्टार्विंग फॉर अ करियर, कमिटमेंट ही हमें वो डेडिकेशन देता है जिससे हम अपने काम में वो एक्स्ट्रा पुश, जिसको हम एक्स्ट्रा एफर्ट बोलते हैं ना, वो डालते हैं। ये एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, जिसे हम अपने कलीग्स या सुपीरियर्स का या जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जीत सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू प्ले सम अमेजिंग म्यूजिक टू मेक योर मूड लिटिल चिल, तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा मेरे साथ यानी आरजे आयुष के साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

लेडीज एंड जेंटलमैन, पीपल ऑफ ऑल द एजेस टू आवर शो। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। आइए दोस्तों जानते हैं कि कैसे कमिटमेंट हेल्प्स इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर हो सकता है आने वाले हैं, तो ये बात जान लीजिए कि इट फॉर्म्स अ बेडरॉक ऑफ ट्रस्ट एंड लॉन्गेविटी। अपने प्रॉमिसेस को रिस्पेक्ट करके अपने लव्ड वंस का हमेशा साथ देना हर सिचुएशंस में, चाहे वो दुख हो या फिर सुख। वी कल्टीवेट द डीपर कनेक्शन एंड फॉस्टर अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। कमिटमेंट देना एक रिलेशनशिप में इट्स लाइक अ टू वे स्ट्रीट, जिसमें दोनों साइड से कमिटमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड म्यूचुअल डेडिकेशन स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन द इंडिविजुअल्स। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर दोनों मिलकर थोड़ी सी बात कर लीजिए आपस में, जिससे जहां चूक हुई हो या कमिटमेंट की लाइन जहां पार हुई हो उसे समझा जा सके और सिचुएशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जा सके, या सॉर्ट आउट कर लेंगे अगर आप बात करेंगे तो। दोस्तों मुझे पता है जितना आप हमारे एपिसोड्स पसंद करते हैं उतना ही हमारे द्वारा चलाए गए सुपरहिट सॉन्ग्स को, तो मैं बजाने वाला हूँ आप सभी के लिए यही सुपरहिट सॉन्ग्स। तो आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

दोस्तों जैसे कि हमने जाना, कमिटमेंट हर तरह से आपकी लाइफ का एक पार्ट है और जैसे कि मैंने आपको कहा, इट्स लाइक अ प्रॉमिस जिसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। पुराने जमाने में एक फ्रेज के रूप में इसको देखते थे जिसका मतलब था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, जिसका मतलब है अपने वर्ड्स के लिए उस टाइम में लोग जान देने के लिए भी तैयार होते थे। खैर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस इस फ्रेज से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी है कि कोई भी कमिटमेंट आपको अधूरी नहीं छोड़नी है, उस पर हमेशा अटल रहना है, आपके डिसीजन पर अटल रहना है। टू कल्टिवेट कमिटमेंट वी मस्ट स्टार्ट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस। दोस्तों पर्पस की क्लियरिटी होने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। हमें एक गाइडिंग लाइट मिलती है जिससे हम बेहतर फोकस करके अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। हमें खुद को ऐसे लोगों से अटैच्ड रखना है जो हमसे हमेशा वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए हमको पुश करते हैं। दोस्तों कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पेशेंस की भी बहुत जरूरत होती है। कई बार अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आप खुद पर डाउट करने लगेंगे, लेकिन आपको हताश नहीं होना है और अपना बेस्ट शॉट हमेशा देते रहना है उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्ले वन सुपर अमेजिंग सॉन्ग जिससे सुनकर आप हो जाएंगे एकदम रिलैक्स। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे शो बी रिलैक्स में, ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

स्वागत है आपका एक बार फिर और आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा शो बी रिलैक्स वेलकम के सबसे बड़े रेडियो स्टेशन पर जिसका नाम है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु और मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा आरजे आयुष जो कि आपके साथ हमेशा बना हुआ है। दोस्तों आज हमने जाना कि कमिटमेंट का कितना महत्व है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में। प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल ग्रोथ तक ये हमारी लाइफ को डायरेक्शन देते रहता है। इट इम्पावर्स पर्सनल ग्रोथ ड्राइव्स प्रोफेशनल सक्सेस एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। इसी कमिटमेंट से आप अपने छोटे से लेकर बड़े सपनों को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों मसले मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की सच्चाई। तो अगर प्रॉब्लम्स आए तो उन्हें उनसे भागना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है क्योंकि प्राण जाए पर वचन ना जाए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE।

दोस्तों, कोई भी खूबसूरत चीज जब हम देखते हैं तो अपने आंखों में अपने आप ही एक चमक आ जाती है और चेहरे पर मुस्कान आती है। सुंदरता, सौंदर्य, खूबसूरती हमेशा ही हमारे मन को रिझाती है। तो इसी थीम पर आज कुछ प्यारे गाने मैं आपको सुनाऊंगी। शुरू करती हूँ आज का शो और सुनाती हूँ पहला गाना। आप बने रहिए मेरे साथ वीणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासूपर।

दोस्तों कहा जाता है कि खूबसूरत इंसान से मोहब्बत नहीं होती, पर जिससे मोहब्बत होती है वो इंसान अपने आप ही खूबसूरत लगने लगता है। इसका और एक मतलब ये भी है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, यानी देखने वाले की नजरों में खूबसूरती होती है और इसीलिए उसे सब कुछ खूबसूरत दिखता है। जो इंसान हमें बेहद खूबसूरत लगता है, जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया को भी वो खूबसूरत लगता हो, पर फर्क हमारे नजरिए से पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, सुनाती हूँ अगला गाना। आप लौट कर आइए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासू पर।

भाई एक प्यारी मुस्कान जो है वो बड़े बड़े बिगड़े दिन और बिगड़े चेहरे ठीक कर सकती है। कई बार ऐसा होता है, बहुत ही मुश्किल दिन चल रहा होता है, बहुत ही परेशानियों का सामना हम कर रहे होते हैं, पर किसी की मासूम प्यारी सी मुस्कुराहट हमारी हिम्मत बढ़ा देती है। चेहरे पर माथे पर जो तकलीफ और परेशानी की शिकन है वो दूर कर जाती है। इसीलिए खूबसूरती हमारी जिंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट होती है। मैं आरजे स्वरा आपको मिलती हूँ अगले इस गाने के उस पार।

खूबसूरती सौंदर्य ये तो कुदरत का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, पर उस खूबसूरती का कोई मतलब नहीं जो दूसरों के काम ना आ सके। खूबसूरत है वो लब जिन पर दूसरों के लिए दुआ आती है। खूबसूरती ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, वो आपकी जिंदगी नहीं है। खूबसूरती का घमंड करोगे तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा, पर अपनी खूबसूरती को बुलाकर दूसरों के लिए, उनकी तकलीफों के लिए, उनकी परेशानियों के लिए काम करोगे तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी। बातें तो जारी रहेंगी, वक्त हो गया है अगला गाना सुनने का। आप सुनते रहिए यादों की बारात मेरे यानी आरजे स्वरा के साथ।

कहते हैं जिनकी हंसी बहुत खूबसूरत होती है अक्सर उनके घाव बहुत गहरे होते हैं। जिन्होंने तकलीफें नहीं देखी उनकी खूबसूरती अभी कच्ची है। यादों की बारात में दोस्तों हम अक्सर ही आपको कुछ ऐसे सदाबहार नगमे सुनाते हैं जो आप रोज नहीं सुनते पर जब भी सुने गुनगुनाए बिना रह नहीं पाते।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसोपिया ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: रे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।